0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इन अपोलो हैमर स्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
0: सारी रात Bollywood classics का साथ, सिर्फ Leica Gold पर.

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
2: फिर
0: फुर
2: फुर
0: फुर फुर। बताओ नी बड़ी, क्या बात हुई? कह दो
3: कह दो
0: कह दो कह दो।

0: पराई।
1: रघुकुल रीत चला चती चल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाना ना जाई,
2: जाई जाई
1: बन चले।

0: ये गुलम।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

0: Leica Gold.
1: Location, location, location.
0: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
0: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
0: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 020-8574-8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड।
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
3: डाइन डिग डिग डिग डाइन डिग डिग डिग डाइन डिग डिग डिग डाइन डिग

0: है लाइका गोल्ड।
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीरथ नाले।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब, नानक रहन जाई।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगति छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: International Siddhashram Shakti Center की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामास्टर रोड एरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
5: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
4: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
7: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
8: Breakfast with Deep Raja. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

0: Disha Basmati Rice, available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
2: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
3: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
4: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
5: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
4: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
5: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
4: दर्शन पण अने यूरोप पण.
5: सीट्स जल्दी

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: ये है Leica Gold.
2: Leica Gold, traffic and travel.
3: Vicarage Farm Road is closed in both directions due to emergency water main repairs heading away from New Heston Road towards Cranford Lane. At the M4 Heathrow Spur Road, the usual congestion there just before the tunnels entering the terminals area. Into Northolt, the A312 Church Road and Medville Road is slow going. That's heading away from the White Hart roundabout down towards the Target roundabout and then on towards Northolt Station. Normal traffic for a Saturday morning. The North Circular Road back in London is slow in Park Royal, heading down towards the A40 from Western Avenue, where it meets the Hanger Lane gyratory system. And that's your latest traffic and travel update.
4: The Hilton sale is now on, and it doesn't sound like this. Instead, it sounds more like this. And with 20% off for Hilton Honors members. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Offer subject to availability. Terms apply.
1: Leica Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: कुल का दीपक समझे थे निकला.
8: 15th मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका.
9: कौन पत्नी कौन वो,
8: सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग. पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में.
5: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए. 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के 1000 नामों के साथ. साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक. स्थान 22 मामास्टर रोड एरो HA37RR. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
14: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
13: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
14: गारंटेड
13: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
14: फोन 0208574 8410.
13: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
15: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
16: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
15: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
18: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
19: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
20: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
21: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Rana.
1: This is Like a Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in London.
2: At Tesco, we know that right now, every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials, so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/Aldi Price Match.
3: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
4: गुड मॉर्निंग, आइए बात करते हैं आज के मौसम की. और आज फिलहाल तो मौसम ठीक है, अच्छी खासी सनशाइन है, कुछ हल्के बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन दोपहर बाद ये बादल अच्छी तरह से छा जाएंगे और कहीं कहीं पर बारिश भी हो सकती है. आज लंदन में मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्रीज तक रहेगा, मैनचेस्टर में 13 डिग्रीज एंड मिडलैंड्स में 12 डिग्रीज के आसपास.
3: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Like a Gold.
4: Ritu Sharma. Yes, good morning, namaskar, swagatam. Aap sun rahe hain aapka manpasand Like a Radio Network. Jahan par ye hai Like a Gold in Greater London and Like a Radio. इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स. और ऋतु शर्मा हाजिर है अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक आपका साथ दे.
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
5: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
6: Travel Hub.
5: At all protected.
1: Leica. Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Leica Gold.

0: लता जी की आवाज में अपने जमाने का सुपरहिट गाना, फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली, जिसमें रविंद्र जैन का म्यूजिक था, और उससे पहले राजकुमार फिल्म का गाना जिसमें भी थी लता जी की आवाज, शम्मी कपूर की फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, और लीजिए दो सुपरहिट गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर यह है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां कहीं पर भी हमारे साथी हमें सुन रहे हैं, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो बता दूं कि मैं हूं ऋतु शर्मा, आपका साथ देने के लिए हाजिर आपसे लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक मेरे आने से पहले ही पहुंच जाते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो जरूर हम उन पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आपको याद दिला दें कि अगर भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, देन आज आपको 1 पाउंड के बदले में 127.75 भारतीय रुपए मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप 1000 पाउंड से ज्यादा भिजवाते हैं तो आपको 75 पाउंड का वाउचर मिल सकता है एवरी वीक, और अगर आप 2000 पाउंड से ज़्यादा भिजवा रहे हैं मनी भारत तो आपको मिल सकता है 1 ग्राम गोल्ड कॉइन, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: जी, मुझे लगता है आपके पास भी कोई फालतू की गल नहीं होगी। आप सब भी बिल्कुल मजे में होंगे और इस प्रोग्राम को हमारा साथ देकर सुन रहे होंगे। और जो अभी अभी हमारा साथ दे रहे हैं, जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बता दूं कि ये है आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं हूँ ऋतु शर्मा।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आपके भरने से पहले आपको हम बताते चलें कि भाई आप सबका हमें इतना प्यार मिलता है कि क्या बताऊं, आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं। चलिए उन पर एक नजर डाल ली जाए। हरी श्रुदा हमारे साथ हैं, हमारे रेगुलर लिस्टर हैं। इमरान, स्वागत है आपका इस शो में। वियाना में अनिल सोनी जी सुन रहे हैं। हमारे शेखर जी हैं, हमारे राजेश जी हैं हमारे साथ, थैंक यू। और आप कहते हैं कि क्योंकि ये महेंद्र कपूर वीक है तो आपने गाना सजेस्ट किया है। अब देखती हूँ कौन सा गाना बजता है, क्योंकि हमारे जो हर साथी हैं कोई ना कोई गीत बजाते हैं। अगर नहीं बजा होगा तो ज़रूर कोशिश रहेगी। इसके अलावा हंसा बोरा जी, मितुल पटेल हमारे साथ हैं, हरीश खत्री जी स्वागत है आपका, अर्जुन जी, सहर जी, तोची जी, प्रज्ञा, यस मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरे साथ होती हैं, थैंक यू सुनीति प्यार के लिए, थैंक यू अरुणा जी। जासू जी कहती हैं आपकी आवाज़ सुनकर दिल खुश हो जाता है, और कहूँ क्या जासू जी, आपका ये मैसेज पढ़कर मेरा दिल खुश हो जाता है। थैंक यू, स्वागत है। विनोद जी हमारे साथ है, दिनेश सॉरी, थैंक यू, दो बैक टू बैक गाने आपको पसंद आए। और कहते हैं कि जो तो हम आपका सुनते हैं, आपका नाम तो जानते हैं, लेकिन आपसे मिलने की तमन्ना है। मैं भी ज़रूर चाहती हूँ आप सबसे मिलना, और देखिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। थैंक यू, स्वागत है आपका इस शो में दिनेश जी। संतोष जी, नरेंद्र बागी हमारे साथ हैं, मृदु जी थैंक यू, और ये कौन है, सीमा हयाती प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू सीमा। संध्या भावसर कहती हैं बाहर का मौसम ऋतु अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे पता है गीतों का मौसम अच्छा होगा। ये तो आपने मेरा डायलॉग बोल दिया। लेकिन बाहर का मौसम इतना बुरा नहीं है फिलहाल, हाँ दोपहर के बाद बुरा हो सकता है, लेकिन गीतों का मौसम शानदार ही रहेगा। थैंक यू साथ देने के लिए। राजीव पटेल जी कहते हैं गार्डन में काम करते करते मैंने अपनी मसल पुल कर ली है। तो भाई गार्डन में काम बहुत ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है। जब हम गार्डन में जाते हैं ना तो बस जुट जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये हमें हर्ट भी कर सकता है। बड़े बड़े पेड़ों को पकड़कर उखाड़ने में मैं तो लग जाती हूँ, और बाद में जब काम खत्म करके जाती हूँ तो लगता है अरे मर गए, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये हो गया वो हो गया। तो गार्डन में ध्यान से काम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। इसके अलावा मिसेस के चियांग आप भी हमारे साथ हैं, मिस्टर शेख महेंद्र बजारिया थैंक यू। मैसेजेस का सिलसिला बहुत लंबा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ज़रूर बताऊंगी, ये आपका प्यार है जिसने एक बार फिर से लाइका रेडियो नेटवर्क को नंबर वन बनाया है। जी हाँ, जो लेटेस्ट रजार फिगर्स आए हैं उसमें फिर से लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड नंबर वन पोजीशन पे है ग्रेटर लंदन में। और आपको बता दें कि गोल्ड तो हमारा वो रेडियो है जिसे आप सब सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा सुना जाता है, ये लेटेस्ट रजार फिगर्स ने बताया है। तो ये आपका प्यार ही तो है, तभी तो आप हमें ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो बस इसे बनाए रखिए, या फिर इसे दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपको एंटरटेन करते हैं करते रहें।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: लीजिए, हमारे जितने भी मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन हैं उनके नाम पर जाता है ये गाना। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी से लिया था, जिसमें आनंद जी कल्याण जी यानी कि कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक था और इस फिल्म को बनाया था प्रकाश मेहरा ने। और प्रकाश मेहरा ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये फिल्म भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। पर लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के करियर में बहुत बड़ा बूस्ट जो आया वो प्रकाश मेहरा की फिल्मों से आया, और ये बात सच है। जो एक के बाद एक अमिताभ बच्चन की फिल्में हिट हुई वो सब प्रकाश मेहरा ने ही डायरेक्ट की थी। और उनकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की यादें में हम प्रकाश मेहरा को ही याद करने वाले हैं, तो यस अमिताभ बच्चन की फिल्मों के गीत आपको सुनने को मिलेंगे।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Like a Gold.
0: बिल्कुल, मैं रितु शर्मा ही हूँ आपके साथ, और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं और एक डेडिकेशन भी आई है। ये मुझे भेजा है, किसने भेजा है, बहुत सारे नाम है। आपने लिखा है कि कैन यू प्लीज मेंशन हैप्पी एनिवर्सरी टू माय डैड दिलीप एंड मम्मी उर्मिला, और प्लीज प्ले ए नाइस सॉन्ग उन दोनों के लिए। और किन की तरफ से है ये गाना जाता है, आरुष, ऐशी, अंकल भावेश, जागृति और जय। आप सभी विश करना चाहते हैं अपने डैड दिलीप और मम्मी उर्मिला को, और उसके अलावा भावेश जी, जागृति एंड जय। आई एम श्योर कि मैंने आपके नाम सही लिए होंगे, आरुष एंड आयशी। तो चलिए, हमारी ओर से भी दिलीप एंड मम्मी उर्मिला आपको एनिवर्सरी की ढेरों बधाइयां, और ये गाना कुमार शानू की आवाज में आपको ही डेडिकेट करते हैं।
1: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall, with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: झलक रही है।
1: यस, कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज़ों में था ये गाना। और आप सब जानते ही हैं कि बैंक हॉलिडे मंडे जो है 25th में, उस दिन कुमार शानू लाइव परफॉर्म करने वाले हैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में। तो अगर आपने अभी तक अपने टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए, टिकट मास्टर यूके पर जाकर अपने टिकट्स बुक कीजिए।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730098823।
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu chhe. Ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment. Laine avi rahya chhe. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah saathe. Hasyani full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo video rama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655।
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
12: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
13: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
14: Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
15: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
14: Call today on 01923-883-100
15: or go to skylordcruiseandholidays.com.
14: Book with confidence.
15: We're Atoll protected.
16: પ્રેમ પાસ્ટ અને ફ્યુચર વચ્ચે અટકાયેલું એક દિલ,
17: તમને શું લાગે છે હું અહીંયા સાચે વેડિંગ પ્લાન કરવા આવી છું?
16: વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી સ્ટારિંગ પૂજા જોશી, પરીક્ષિત તામલિયા, ભાવિન ભાનુશાલી, મિલોની જોન્સા, અ ફિલ્મ બાય ધ્વનિ ગૌતમ, રિલીઝિંગ ઓન 15th મે।
18: આ ફેમિલી વાળી ફિલિંગ ને મેં ત્યાં બહુ મિસ કરી છે। साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
19: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
2: लाइका रेडियो, फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज।

0: लेकिन शाम आते आते बरसात भी शामिल हो जाएगी और मौसम भी ठंडा है। आज लंदन में मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्री तक रहेगा, मैनचेस्टर में 13 डिग्री और मिडलैंड्स में टेम्परेचर 12 डिग्री के आसपास तक ही जाएगा।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: Ye hai Laika Gold.
0: सही सुना आपने, मैं ऋतु शर्मा ही हूँ इस प्रोग्राम में आपके साथ दोपहर के 1 बजे तक। और प्रोग्राम के सेकंड आवर में होती हैं यादें और आज की यादें में हम बात करने वाले हैं जाने माने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के बारे में। आज नहीं कल उनकी पुण्यतिथि है। कुछ गाने
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
1: Leica. Ritu Sharma live on Leica Gold, Greater London.

0: कद्दर का सिकंदर फिल्म से लता जी की आवाज में आप सबका फेवरेट गाना हमारी आंटी जी और मिसेस पे के चियांग कहते हैं हमारे नाम कीजिए। चलिए मैंने आपके नाम किया और उससे पहले लावारिस फिल्म का गीत किशोरदा की आवाज में अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे अली। क्या हिट हुआ था ये गाना जब ये आई थी फिल्म, और गाना ही नहीं फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी। और इन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने। और न सिर्फ ये दोनों फिल्में, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें अमिताभ बच्चन हैं और अमिताभ बच्चन नहीं भी हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट किया है प्रकाश मेहरा ने और वो फिल्में बहुत हिट हुई हैं। आपने फर्स्ट वाले अवर में गीत सुना था हसीना मान जाएगी, बेखुदी में सनम, उस फिल्म को भी प्रकाश मेहरा ने ही डायरेक्ट किया था। लेकिन क्योंकि इन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए जो फिल्में डायरेक्ट की वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन के डायरेक्टर हैं। या ये कहूँ कि अमिताभ बच्चन को स्टार सुपरस्टार बनाने की जो शुरुआत थी वो प्रकाश मेहरा ने ही की थी। आज उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। कल उनकी पुण्यतिथि है, कल के दिन बहुत ही छोटी सी उम्र में जब सिर्फ 69 ईयर्स के थे 2009 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना, अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने का सारा क्रेडिट जाता है प्रकाश मेहरा को। वैसे तो इनकी बर्थडे अक्टूबर में आती है, यूपी में ये पैदा हुए थे और शुरुआत में इन्होंने एक प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ साथ जो जंजीर फिल्म थी वो इनके भी करियर का टर्निंग पॉइंट था। कैसे था, कैसे इन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्म में साइन किया, सब बातें बताऊंगी। लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: मैं आपको याद दिलाऊंगी कि अगर भारत पैसा भेजना चाहते हैं तो 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 127.75 भारतीय रुपए। और इसके अलावा अगर आप 1000 पाउंड से ज़्यादा भारत भिजवाते हैं तो आपको मिलेगा 75 पाउंड का एक वाउचर, और अगर आप 2000 पाउंड से ज़्यादा भिजवाते हैं तो आपको मिलेगा 1 ग्राम गोल्ड कॉइन। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
3: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
4: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
3: Call today on 01923 883 100
4: or go to skylordcruiseandholidays.com.
3: Book with confidence.
4: We're atoll protected.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: रामकृष्ण हरि यूके फील द पावर ऑफ महाराष्ट्र दिस 6th जून एक्सपीरियंस वाद्य महोत्सव 2026 लाइव एट रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशा परंपरा संस्कृति और फुल ऑन जोश का मेगा सेलिब्रेशन भारत से यूके तक एक ही रिदम एक ही प्राइड टिकट्स लाइव नाउ एट svrtuk.org लाइका लिसनर्स गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट यूज कोड लाइका 10 वाद्य महोत्सव 2026 फील द बीट लिव द लेगेसी

0: आशा जी की आवाज में जंजीर फिल्म से था ये गाना, जो प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के करियर की एक ऐसी फिल्म थी जिन्होंने उनके करियर को, उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। लेकिन इस फिल्म को बनाने के पीछे प्रकाश मेहरा को बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये प्रकाश मेहरा के जीवन का बड़ा ही मशहूर किस्सा, या कहूँ एक यादगार दिलचस्प किस्सा है। जब सलीम जावेद ने इस कहानी को लिखा और प्रकाश मेहरा को चुना इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, तो प्रकाश मेहरा चाहते थे कि ये फिल्म ऐसी बने कि उनकी गाड़ी चल निकले, क्योंकि उससे पहले उनका करियर भी बहुत डावाडोल था। अब उन्हें एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो एक कड़क और गंभीर पुलिस वाले का किरदार निभा सके। इंस्पेक्टर विजय आपको याद होगा, जो कैरेक्टर अमिताभ बच्चन ने निभाया था। तो बस प्रकाश मेहरा ने सोचा कि किसे इस फिल्म के हीरो के रूप में लिया जाए। सबसे पहले उन्हें याद आया राजकुमार का नाम, कड़क आवाज, दमदार पर्सनैलिटी। पहुंच गए राजकुमार के पास, लेकिन भाई साहब राजकुमार ने मना कर दिया फिल्म में काम करने से। जानते हैं क्या रीजन था? क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि उन्हें प्रकाश मेहरा के बालों के तेल की खुशबू पसंद नहीं आई। अब ये मजाक है या सच ये मैं नहीं जानती, लेकिन कहने वाले ऐसे कहते हैं। और सिर्फ इस बात के लिए राजकुमार ने उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया। बताइए, उसके बाद वो धर्मेंद्र के पास पहुंचे। धर्मेंद्र को कहानी पसंद थी, लेकिन धर्मेंद्र उस समय बहुत बिजी चल रहे थे और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म के लिए समय नहीं निकाल पाऊंगा, और उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अब वो पहुंचे उस जमाने के सुपरस्टार देवानंद के पास। उन्होंने कहा देव साहब से कि भाई आप इस फिल्म में काम करेंगे, तो देव साहब ने कहानी सुनी और कहा अरे इस फिल्म में तो रोमांटिक गाने ही नहीं है, कुछ लव सीन ही नहीं है। अगर आप इस फिल्म में कुछ रोमांटिक गाने डाल दें, कुछ लव सीन डाल दें, तो फिर मैं इस फिल्म को कर लूंगा। लेकिन प्रकाश मेहरा स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने देवानंद की बात को मानने से मना कर दिया। और आपको याद होगा कि इस फिल्म में एक या दो ही गाने हैं, ज़्यादा गाने नहीं हैं। पूरी कहानी इंस्पेक्टर विजय के आसपास ही घूमती रहती है। और जब हर किसी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, तब प्रकाश मेहरा प्राण साहब के पास पहुंचे, जिन्होंने इस फिल्म में शेर खान का रोल किया था और वो तैयार हो गए थे। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अमिताभ बच्चन को ले लो, लोग उन्हें अभी फ़िलहाल तो पसंद नहीं कर रहे हैं दर्शक, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और थोड़े गंभीर भी दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस फिल्म को अच्छी तरह कर पाएंगे। और प्रकाश मेहरा ने इस रिस्क को लिया, क्योंकि इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी और एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया। अमिताभ बच्चन पर अपना विश्वास दिखाया और अमिताभ बच्चन ने भी बिल्कुल जी जान लगाकर इस फिल्म में काम किया। और देखिए, जब कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है तो असर तो मिलता है। और देखिए ये फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और इस फिल्म ने ऐसी सफलता दिलाई कि उसके बाद अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी तो जैसे जम गई। एक के बाद एक दोनों ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स में काम किया। ऐसी ही एक और हिट फिल्म का गीत सुनिए।
3: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: के पग।
1: इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी थी, यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी प्रकाश मेहरा थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर ढेर सारी फिल्में बनाई हैं।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
3: दिस इज रितु शर्मा।
1: और आज की यादें में हम प्रकाश मेहरा को ही याद कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था जंजीर का किस्सा कि किस तरह से उस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को लेकर जंजीर फिल्म बना ली, बहुत सारा कर्ज लेकर ये फिल्म बनाई, और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए तो जानते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने फिल्म को रिलीज़ करने से मना कर दिया, और उनका कहना था कि जिस हीरो की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं उस पर हम पैसा क्यों लगाएं? और प्रकाश मेहरा बहुत टेंशन में आ गए। उन पर इतना प्रेशर था कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो तो दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा, बहुत सारा कर्ज लिया था इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन उन्हें विश्वास था और वो अड़े रहे। उन्होंने कहा कि यार रिलीज़ तो करो, कम से कम देखो तो क्या होता है, और जैसे तैसे करके फिल्म रिलीज़ हुई। जानते हैं जब फिल्म रिलीज हुई तो पहले 4 दिन सिनेमा घरों में सन्नाटा था। कहने वाले कहते हैं कि फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, और प्रकाश मेहरा को लगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स सही कह रहे थे, वो बर्बाद हो गए। और इस टेंशन के कारण, इस तनाव के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें तेज़ बुखार आ गया, और बस वो कहीं नहीं गए, घर पर ही रहे। अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया और 4 दिन तक बाहर ही नहीं निकले। और जब 5वां दिन आया तो घर की घंटी बजी, नौकर ने दरवाज़ा खोला, सामने सलीम खान खड़े थे। प्रकाश जी से मिले और उनसे पूछा, कैसी तबीयत है आपकी? प्रकाश जी बोले, बुखार है, मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। सलीम खान प्रकाश जी से बोले, अरे भाई मुस्कुराओ, ज़रा घर से बाहर निकलो, खिड़कियाँ खोलकर देखो, आपका बुखार गायब हो जाएगा। थिएटर्स के बाहर लाठी चार्ज हो रहा है एडवांस बुकिंग की, खिड़कियाँ टूट गई हैं और लोग ब्लैक में टिकट खरीद रहे हैं। ये बात सुनकर तो प्रकाश मेहरा को यकीन ही नहीं हुआ। वो तुरंत थिएटर की ओर भागे और उन्होंने टिकट खरीदा और बैठकर फिल्म देखी, और देखा कि अमिताभ बच्चन के हर एक डायलॉग पर लोग तालियां बजा रहे हैं। खास तौर पर जहां पर अमिताभ बच्चन प्राण साहब से कहते हैं, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ऐसे डायलॉग सुनकर लोग जब तालियां बजा रहे थे, तब प्रकाश मेहरा को चैन में चैन आया, और उनको लगा कि उन्होंने जो अमिताभ बच्चन पर जुआ खेला, जो उन पर विश्वास दिखाया, वो गलत नहीं था। और देखिए उसके बाद तो दोनों की दोस्ती ऐसी हो गई कि ढेर सारी फिल्मों में उन्होंने साथ में काम किया, और आज ऐसी फिल्मों के कुछ गीत सुनवा रही हूँ। इनफैक्ट एक और गीत ऐसी ही सुपरहिट फिल्म का है जिसमें यही जोड़ी है, मतलब यही प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन।
3: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Leica Extra podcast update.
1: तो वो गाना सुनाने से पहले आपको बता दें कि भाई लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड आ चुका है, और इस बार का टाइटल है इंडिया वीक शोकेस। होस्ट किया है अनुज राडिया ने, और जिसमें बात हो रही है लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम May 26 to May 31st। तो भाई आप ज़रूर देखिए, बात कीजिए और सुनिए, और आपको बता दें कि ये अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन और एप्पल पर।
3: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
0: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
0: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
0: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
0: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
11: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
10: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
11: Rich, authentic taste every single time.
10: Royal Chai, brewed for business.
11: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
16: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
17: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
16: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
17: गारंटेड
16: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
17: फोन 0208574-8410।
16: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
18: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: का गोल्ड।
1: सही सुना आपने, मैं ऋतु शर्मा हूँ। 1 बजे तक द ऋतु शर्मा शो में आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो स्टेशन। प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में आपका स्वागत है। इस आवर में हम खेलेंगे थ्री वर्स गेम और सुनवाऊंगी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी, और पहले दो गाने बैक टू बैक।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.

0: बस ये थी लता जी और मुकेश जी की आवाजें, सदाबहार गाना जिसमें सदाबहार म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और उससे पहले जानी दुश्मन फिल्म का गीत आपको सुनवाया जिसमें एक बार फिर से रफी साहब की आवाज थी, साथ में थी आयशा भोसले और म्यूजिक एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर, आप सभी का एक बार फिर से इस शो में स्वागत है। आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं और जिसमें कुछ मैसेज तो बहुत ही अच्छे तारीफ भरे हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जिसमें खूब सारी तारीफ होती है। अब देखिए, इंसान में बुराई तो होती है लेकिन कोई उन बुराइयों को अलग रखकर आपकी अच्छाइयों की तारीफ करे तो खुशी तो होती है। एंड आई लव दोज टाइप ऑफ मैसेजेस, सो थैंक यू, भिजवाते रहिए, आप हमारा साथ दे रहे हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महेंद्र बाजारिया जी, संध्या जी, एलिंग से दिल, एजाज चैशम से, नॉर्थ हॉल से प्रकाश जी, और ये कौन है, ये है दीपिका वर्मा। ओहो क्या बात है, आप भी सुन रही हो, लवली, थैंक यू। शरफून स्वागत है आपका। और ये कौन है जिनका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या हाँ नाम है, किशोर लाडवा जी, थैंक यू, आपको मजा आ रहा है, आप गाड़ी में प्रोग्राम सुन रहे हैं, सो थैंक यू साथ देने के लिए। प्रज्ञा थैंक यू, निर्मला थैंक यू, राजेंद्र राज जी, एनएसएस भोगल जी, स्लाव से रानी जी और हमारे सारे साथी जो हमेशा ही बड़े प्यार के साथ साथ देते हैं। तो चलिए तैयार है इस वाले आवर के लिए, इस आवर में आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक सुनाऊंगी और हम खेलेंगे थ्री वर्ड्स गेम भी। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं, हमेशा की तरह बॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे से गीत से लिए मैंने, और ये जो गाना है ये 1971 की फिल्म का है जिसमें एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, इस बार आवाज़ है लता जी और किशोरदा की। और पहला वर्ड है प्यारी, यस प्यारी, दूसरा वर्ड है हमारी, मैं नहीं प्यारी हमारी ठंडी, यस वैसे यहाँ के लोगों को तो ठंडी कभी भी प्यारी और हमारी नहीं लगती है लेकिन हमारे वर्ड्स ऐसे ही हैं, प्यारी हमारी ठंडी, कौन सा है ये गाना, अगर आपको पता चल गया है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरा अपना मैसेज भिजवाना।
1: व्हाट्सएप मैसेज लाइक ए गोल्ड नाउ ऑन 0744 23 23 23।
0: तो चलिए एक बार फिर से वर्ड्स रिपीट कर दूं, मुझे भी हंसी आ रही है आज के वर्ड्स पढ़कर। पहला वर्ड है प्यारी, दूसरा वर्ड है हमारी, तीसरा वर्ड है ठंडी, कौन सा है ये गाना, 1971 की फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, लता किशोर की हैं आवाजें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो याद दिलाते चलें कि 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिल सकते हैं 127.75 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app। और इसके अलावा अगर आप 75 पाउंड का गिफ्ट वाउचर देना चाहते हैं तो आपको 1,000 पाउंड से ज़्यादा सेंड करने पड़ेंगे मनी, और अगर आप 1 ग्राम गोल्ड कॉइन चाहते हैं तो फिर ट्रांसफ़र कीजिए 2,000 पाउंड या उससे ज़्यादा SBI ब्रांच से, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Ye hai like a gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: 105 super hit shows pachi have London ma aavi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment line aavi rahya che sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Sameer Shah saathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860-280-655. Sakhna rejo husband ji.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danio. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
11: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
9: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र. क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
12: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
13: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
14: दिशा राइस इज अवेलेबल इन ऑल एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड एंड सोनी कैश एंड कैरी, ऑल सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सिरा कैश एंड कैरी, साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स, रेडिंग एंड स्लाव.
13: दिशा बासमती राइस.
14: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
17: No more worries for me.
18: Southall Travel, at all protected.
19: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
20: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: 1965 की फिल्म वक्त से था ये गाना, जिसमें महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें थी। और महेंद्र कपूर ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं ढेरों इस तरह के मीठे मीठे गाने गाए हैं।
1: ये है Like a Gold, Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: तो लीजिए, हमारा थ्री वर्ड्स गेम चल रहा है और मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, और क्या कहूँ, सबने सही जवाब दिया है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। और जिन्होंने आंसर दिए उनके नाम ज़रूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल शुरू करती हूँ आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का सिलसिला। फरीदाबाद जी ने कह दिया है कि ब्लैक एंड वाइट के दोनों गाने मेरे नाम कह दीजिए। बिल्कुल आपके नाम, और आपके साथ साथ उन सभी यंगस्टर्स के नाम जिन्हें हमारे गोल्डन ओल्डीज पसंद आते हैं। चलिए सुनवाते हैं आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का पहला गाना।

0: क्या कहेगा।
1: ये गाना सुनने में जितना खूबसूरत लगता है, मुझे तो देखने में भी उतना ही प्यारा लगता है। देवानंद और नूतन की जो हल्की फुल्की छेड़छाड़ है ना इस गाने में, मजा आता है देखकर। एल जी बर्मन का कमाल का म्यूजिक था, जिसमें आवाजें किसकी थी, आशा नहीं, किशोर कुमार और लता जी की। और प्रज्ञा कहती है कि ऋतु ये गाना मेरे लिए छोड़ दो, मैंने आपको दे दिया ये गाना, और उसके अलावा जिन्हें भी ये गीत पसंद है आप सभी के नाम पर जाता है ये गीत।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is Ritu Sharma.
1: बिल्कुल सही सुना आपने, मैं ऋतु शर्मा ही हूँ और ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। सभी का स्वागत है इस शो में। और आज थ्री वर्ड्स गेम के बहुत सारे आंसर्स आए हैं और सभी ने बिल्कुल सही सही पहचाना है। तो दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवाने से पहले बताती हूँ कि जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम है मितुल पटेल, एजाज, दामिनी बेन, मनीषा शाह, उल्लास, नरेन पटेल, राजीव पटेल, नीलेश तन्ना, शुमिला मंगर, विनोद, स्मिता दास, अनिल मालदे, संध्या भावसर, महेंद्र बजारिया, तोची, रानी सुहानी, करसन पिंडोरिया, उषा खोड़ा, सहर, दिव्या जी, अमर जी, अयूब चौहान, किरण हैरो से, कुकी, एस एस भोगल जी, एंड ये किसने अभी अभी मैसेज भेजा है, हमारी यास्मीन बानो, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। तो आज के थ्री वर्स गेम वाला भी गाना सुनवाऊंगी, लेकिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना हो जाए।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लता जी और उषा मंगेशकर की आवाजों में था ये मस्ती भरा गाना, जिसमें सी रामचंद्र का म्यूजिक था। और देखिए म्यूजिक में कितनी ब्यूटीफुली घुंघरू की आवाजों को ऐड किया था। और नरेन पटेल जी कहते हैं कि गाना बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड डांस इसमें था। यस, बहुत ही खूबसूरत दोनों जो डांसर्स थी उन्होंने डांस किया था। और ऐसे गीतों को देखकर मजा आता है, मस्त म्यूजिक था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और हमारे एजाज जी पूछते हैं कि अपलम चपलम का मतलब क्या है। आई थिंक ये जिब्रिश है, मुझे तो लगता नहीं कि इसका मतलब कुछ होगा, या फिर ये हुआ कि ज़्यादा अपलम चपलम मत करो, चुपचाप बैठे रहो। ये भी हो सकता है, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, लेकिन गाना अच्छा लगता है। और बस अब क्या, ये तो थे हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक के दो गाने। और ये है हमारे भारत से गिरीश जी, थैंक यू सो मच, कहते हैं आपके शो में आनंद आ जाता है, तो थैंक यू, आपका मैसेज पढ़कर मुझे भी अच्छा लगा। तो बस चलिए सुनवाते हैं आपको आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे सभी ने सही सही बताया है। और अभी अभी इतेश कुमार जी आपका मैसेज आया है और आपका भी आंसर बिल्कुल सही है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मैच में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामास्टल रोड एरो H3 7RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208-426-0678 और विजिट आश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
5: प्रेम पास्ट अने फ्यूचर वच्चे अटकायलो एक दिल
6: ने शु लागे छे हूं यहां साचे वेडिंग प्लान करवा आवी छु।
5: वाकी चुकी लव स्टोरी स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तामलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th मई।
7: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहुत मिस करी छे।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
10: Atif Aslam live in the UK.
11: Oh, Julilal Kalandar, mast, mast, da, mast.
9: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
10: Book your tickets now at AXS.
9: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
13: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
12: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
14: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099883।
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
15: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: यू नो कुछ गाने होते हैं जो आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स. व्हाट अ लवली रोमांटिक नंबर फ्रॉम द मूवी चांदनी, अ सुपर डुपर हिट ऑफ द 80s. अच्छा, इसमें थे ऑफ कोर्स द गॉर्जियस श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, एंड जूही चावला प्लेड अ गेस्ट अपीयरेंस इन दिस मूवी. दिस वाज डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा. आई थिंक ही वाज द किंग ऑफ रोमांस, एंड ऑफ कोर्स ही इज नोन वर्ल्ड वाइड. क्या प्यारी वाली मूवी थी ये, एंड इतने प्यारे प्यारे गाने मेरे वीर के साथ. आई एम वीर इन फॉर द लवली अनुराग गिविंग यू कंपनी ऑल द वे टिल 4 PM. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इस मूवी के बारे में. सो डिड यू नो दैट श्रीदेवी वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर द मूवी चांदनी? देर वॉज अनदर ब्यूटिफुल हीरोइन हु हैड ऑलरेडी वर्क विद यश चोपड़ा इन वन ऑफ द मूवीज इन 80s. शी वॉज द फर्स्ट चॉइस. सो मैसेज मी एंड टेल मी हु वॉज दैट हीरोइन हु वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर द मूवी चांदनी. ऑफकोर्स शी टर्न ऑन दिस मूवी एंड देन दिस मूवी केम टू श्रीदेवी एंड वी गॉट आ चांदनी. आई मीन हु एल्स कुड बी अ बेटर चांदनी दैन श्रीदेवी. आई एम वीर एंड थैंक यू सो मच. Laika Radio is London's number one Asian retro music station, available on 10:35 AM and DAB in Greater London and worldwide on LaikaGold.com, Alexa and Laika Radio mobile app. Well, the fun will continue. Ye to bas shuruaat hai.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So, your £1 in British sterling could get you up to 127.75 Indian rupees. Send money to India via Yono SBI UK mobile app or branch before the end of June, and you can win a £75 voucher every week when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin when spending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया. लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
5: खातून कौन थी?
6: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस.
5: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल.
7: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट. 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो. इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th of May.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: मॉम, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। माय हेयर इज गेटिंग वर्स। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग वर्क्स।
2: बेटा, यू आर नॉट अलोन। फॉर 5 जनरेशंस आवर फैमिली ट्रस्टेड वन थिंग, प्योर हर्बल केयर, आमला, ब्रिंगराज, नीम, रियल इंग्रेडिएंट्स, नॉट केमिकल्स।
1: सो वेयर डू वी फाइंड समथिंग लाइक दैट नाउ?
2: राइट हियर इन लंदन, बैद्यनाथ सिद्धायु हेयर ऑयल शैम्पू एंड टूथपेस्ट, प्योर आयुर्वेदिक प्रीमियम एंड मेड द वे आवर एल्डर्स यूज्ड इट।
3: फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी, अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स एंड अदर लीडिंग रिटेल स्टोर्स अक्रॉस द यूके।
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24।
5: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
6: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स,
6: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
6: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
5: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 0730099823।
6: बुक योर टेबल टुडे।
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: Ab London baithe milega Asian ethnic swad instantly thanks to Jamin Foods.
10: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Sheera, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
9: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with Jamin Foods.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
12: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
13: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले Like a Gold और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये आशा जी कहती है नहीं नहीं नहीं नहीं. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड रफी साहब फ्रॉम द मूवी हम दोनों. यू नो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दे टेक यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज सॉन्ग्स. वेल ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइका गोल्ड. एंड जब लाइका की बात हो ही रही है, द लेटेस्ट रेडियो लिसनिंग फिगर्स आर एक्चुअली इन लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड आर स्टिल द नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंडन. लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड रिमेन कंसिस्टेंट विद लाइका गोल्ड नाउ बींग लिसन टू any other, you know, longer than any other commercial Asian radio station in the UK, according to the latest Radar data. Hai na ye badi maze wali baat hai, and it's all thanks to you. So thank you so much ki aap Laika Gold sunte hain and you really enjoy the lovely music that we play only for you.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Aap sun rahe hain Golden Rag, Anurag ke saath.
1: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: जी हाँ, बात बन गई ना, व्हाट अ लवली ट्रैक फ्रॉम द मूवी कुर्बानी इन द वोकल्स ऑफ नाजिया हसन. एंड दिस मूवी वाज डायरेक्टेड बाय द लेजेंड फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट. ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर.
2: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Ye hai Leica Gold. Leica
4: Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai,
12: London. This 20th June, Bollywood ki powerhouse voice Bhumi Trivedi aa rahi hai live in London. Get ready for one unforgettable night of music, dance and full on energy. Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Book now at srevents.com. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
14: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
13: Call today on 01923 883 100
14: or go to skylordcruiseandholidays.com.
13: Book with confidence.
14: We're atoll protected.
15: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
16: પ્રેમ પાસ્ટ અને ફ્યુચર વચ્ચે અટકાયેલું એક દિલ
17: તમને શું લાગે છે હું અહીંયા સાચે વેડિંગ પ્લાન કરવાવી છું
16: વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી સ્ટારિંગ પૂજા જોશી પરીક્ષિત તમલિયા ભાવિન ભાનુશાલી મિલોની જોન્સા અ ફિલ્મ બાય ધ્વની ગૌતમ રિલીઝિંગ ઓન 15th મે
18: આ ફેમિલી વાળી ફિલિંગ ને મેં ત્યાં બહુ મિસ કરી છે
19: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
20: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
19: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
20: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
19: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
20: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
0: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, you're a star or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: गाना बहलाना।
1: जी हाँ, क्या होगा अगर दो लेजेंड्स रफी साहब एंड आशा भोसले एक ही गाना गाएं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। What a lovely track from the movie यादों की बारात। Of course, धर्मेंद्र जी is one of my favorite actors। बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं मेरे साथ, सो बने रहिए on Like a Gold।
2: Classic Throwback is brought to you by Like a Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Like a Gold 2. Available at LikeRadio.com, via Alexa, or by using our Like a Radio mobile app.

0: प्यार का राग सुनो रे। वेल, अनुराग का शो है तो राग तो आना ही है। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द लवली म्यूजिक। वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट ट्रैक्स दिल का भंवर फ्रॉम द मूवी तेरे घर के सामने, ऑफ कोर्स देव साहब एंड नूतन जी इन दिस सॉन्ग। एंड this song was actually shot in Qutub Minar, you know, so they're actually walking up the stairs and of course Dev Saab is actually flirting with Nutan ji in this song, and it's such a beautiful romantic number. Aise bahut sare pyare pyare gaane only on your favorite radio station like a gold
1: feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: aap sun rahe hain golden rag anurag ke saath.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: जब मैं ये सॉन्ग सेलेक्ट करा था फॉर माय प्लेलिस्ट टुडे, आई वाज सो कंफ्यूज कि शुड आई प्ले आशा भोसले'स वर्जन और शुड आई प्ले किशोर दास वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, क्योंकि मुझे दोनों ही गाने बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं. वेल, आपको कौन सा वर्जन अच्छा लगता है? आई डू यू लाइक दिस सॉन्ग इन किशोर दास वॉइस और डू यू लाइक दिस सॉन्ग इन आशा भोसले'स वॉइस? मैसेज मी, मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा. आई एम वीर इन फॉर अनुराग ऑन गोल्डन रॉक ऑन लाइक अ रेडियो.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling could get you up to 128 Indian rupees, 371 Pakistani rupees, 435 Sri Lankan rupees, 163 Bangladeshi taka, 83 Afghans and approximately $1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold's trading at £109.87 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Like a Gold. London's number one Asian retro music station.

0: LYCA. This is Lyca.
1: All right. प्रेम कहानी के बाद एक और प्यारा वाला गाना दिस आवर एंड मेरे जाने का वक्त आ चुका है। हाय, जाने का मन तो नहीं कर रहा बट
2: कल आ जाना।
1: यस, आपने सुन लिया, सरिता जी ऑलरेडी स्टूडियो में आ चुकी हैं एंड वो मुझे कह रही हैं कि बस अब निकलो वीर यहाँ से।
2: नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा।
1: अ लवली ट्रैक दिस आवर बाय आशा भोसले, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। एंजॉय दिस लवली ट्रैक।
2: एंड वेरी क्विकली आई वाज लिसनिंग टू यू एंड यू प्लेड द सॉन्ग सनम तेरी कसम एंड आई वाज थिंकिंग ऑन माय वे कि मैं आज सनम पे गाने सुनाऊंगी। अब मेरा एक गाना कट गया।
1: I am so sorry सरिता जी, but I am sure आपके listeners,
2: and you sounded so good.
1: Oh, thank you. And I'm sure आपके listeners आपके लिए super excited होंगे. So guys, चलिए, it's time for me to say bye and enjoy this last track. Take care.

0: अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज़ें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म हम। एंड आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने किया एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम था दीदार, और दीदार में कौन कौन थे? आपने फिल्म देखी थी, अक्षय कुमार थे, करिश्मा कपूर, अनुपम खेर थे, एंड तनुजा भी थी इस फिल्म में। और इस ये एक रोमांटिक एक्शन मूवी थी जिसे प्रमोद चक्रवर्ती जी ने बनाया था। एंड ये फिल्म रिलीज हुई थी 14 अगस्त 1992 में, और बहुत प्यारे संगीत से सवारा था इस फिल्म के गीतों को आनंद मिलन ने। सारे के सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे। कल के प्रोग्राम में भी, बाली जी के प्रोग्राम में, मैंने इसी फिल्म का एक गीत आप तक पहुंचाया था। कौन सा गीत था याद कीजिए, याद कीजिए। एनीवे, मुझे उम्मीद है कि दोनों गीत आपको पसंद आए। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा के लिए आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन, चेयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए, गाने तो मूड वाले हैं। यस, एक वर्ड है दोनों गीतों में सुना आपने, कौन सा वर्ड है? इस वर्ड पर आपको भी कोई गाना याद आ रहा है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आपको पता ही है कि क्या है हमारा व्हाट्सएप मैसेज लिखने के लिए नंबर। नहीं पता तो नोट कीजिए,
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: जी हाँ, मुझे इंतज़ार रहेगा इस नंबर पे आपके मैसेजेस आते रहें स्क्रीन पर। वैसे मेरे बहुत से साथी ऑलरेडी मैसेजेस भेज चुके हैं, तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बता दें कि आज भी प्रोग्राम में क्या क्या चल रहा है। एक तो भाई अरे मेरे हाथ से ही टेलीफोन गिर गया मेरा, पर मैं टेलीफोन पे थी नहीं, वैसे ही हाथ लग गया था। राइट, ओके। एक तो आज बर्थडे किस किस का है बता दें। सोनल चौहान मॉडल एंड सिंगर हैं, धर्मेश दर्शन जी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, विक्की कौशल उनका भी आज ही बर्थडे होता है, एंड और फानी मजूमदार, आपने इन फिल्म मेकर का नाम ज़रूर सुना होगा, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो कोशिश रहेगी कि उनकी फिल्मों के कुछ एक गाने मैं प्रोग्राम में शामिल कर पाऊँ। पर अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते, हाँ ये भी तो बताना है कि कोई गाना बड़ा मशहूर हुआ था, लेकिन क्या हुआ, वो फिल्म में था ही नहीं। एक तो ये भी फीचर होता है मेरे प्रोग्राम में, और क्या होता है, और फीचर होता है कि आज के दिन कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। वैसे कोई सेट फॉर्मेट मैंने कभी प्रोग्राम का नहीं रखा। हाँ, एक वर्ड पे गाने ज़रूर होते हैं प्रोग्राम के फर्स्ट आवर में, लेकिन जैसे भी मेरा मूड होता है वैसे ही प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाती रहती हूँ। क्यों, अच्छा लगता है ना? अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल जवाब चाहिए मुझे आपसे, हाँ या नहीं। आप चाहते हैं कि एक फिक्स्ड फीचर होना चाहिए और वो फीचर एवरी डे मैं प्रोग्राम में शामिल किया करूं, सैटरडे एंड संडे जब भी मैं आती हूं। और आजकल तो बाली जी की जगह बैठ रही हूं, तो बाली जी के प्रोग्राम में तो ट्रिब्यूट्स होती हैं, तो वो भी बहुत पसंद की आपने पिछले दिनों जो मैंने ट्रिब्यूट्स पेश की थी। एंड नेक्स्ट वीक भी जिनके बर्थडे या बर्थ एनिवर्सरीज या डेथ एनिवर्सरीज होंगी तो प्रोग्राम को उसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब ये काम भी हो जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी आप अगर SBI UK वालों के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो किसने मना किया है? आज तो एक और मैसेज है, send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win a £75 voucher every week when you send over £1,000. Wow, badi achhi deal hai. Also, a 1 gram gold coin when sending over £2,000. Terms and conditions apply. और आज का रेट क्या है, 127 rupees and 45 paise आपको मिल सकते हैं 1 British sterling pound के बदले।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
2: Gold. Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me.
1: Southall Travel, at all protected.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Ah! Keep calm,
7: Milo,
6: keep calm.
7: Keep calm, bol, keep calm.
8: May ko Prajapati Pandey lekar aa rahe hain full on confusion aur double dhamaka. Kaun patni kaun wo? Sawal bahut hai, answers aur bhi entertaining. Pati patni aur wo do. Parivar ke saath dekhiye 15th May se cinemas mein.
9: Two businesses.
10: Same town.
9: Same service.
10: One appears on page one of Google.
9: The other doesn't.
10: Guess which one gets the customer?
9: The truth is brutal.
10: The first page of Google gets the business.
9: Everyone else gets what's left.
10: So here's the real question.
9: When your customers search for what you sell, do they find you?
10: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टल रोड हेरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट Ashram official website.
12: Packed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
14: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
15: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जिंदगी का।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: और ये मीठा सा गीत आप तक मैंने पहुंचाया फिल्म आई मिलन की बेला से चुनकर। 1964 की फिल्म थी, लता मंगेशकर एंड रफ़ी साहब की आवाज़ें। और यहाँ मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ, जितने भी हमारे लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं उन सब का थैंक्स, उन सब को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप बड़े प्यार से हमें सुनते रहे। एंड जो लेटेस्ट हमारी रेजर फिगर्स आई हैं उनके मुताबिक लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड स्टिल द नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन। लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड रिमेन कंसिस्टेंट विद लाइका गोल्ड नाउ बीइंग लिसन्ड लॉन्गर देन एनी अदर कमर्शियल एशियन रेडियो स्टेशन इन द यूके। सो ये किसने बनाया? आपने। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रेजर डेटा यही रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन जो है वो है लाइका गोल्ड। सो थैंक यू एवर सो मच, इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।
1: लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: तेरी आंखों की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम।
1: दिल
2: Track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
3: सो बॉम्बे टू गोवा फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को जो आप तक मैंने पहुंचाया और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद भी किया। और मेरे साथ ही बड़े प्यार से सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपके मैसेजेस इसी तरह से बराबर मिलते रहे, बस सरिता यही चाहती है। और भेजते रहिए प्यारे प्यारे मैसेजेस। और आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है क्या कॉमन है आज के प्रोग्राम के फर्स्ट आवर के गीतों में। सनम, यस सनम इज द वर्ड। जिन्होंने गलत जवाब दिया उनको मैंने बता दिया।
4: This is Laika Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Laika Group. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
6: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: at all protected.
7: Visit travelhubworld.com.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, ET Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
12: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office. Office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists.
16: Bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
15: Call today on 01923-883-100.
16: Or go to skylordcruiseandholidays.com.
15: Book with confidence.
16: We're atoll protected.
17: પ્રેમ પાસ્ટ અને ફ્યુચર વચ્ચે અટકાયેલું એક દિલ
18: તમને શું લાગે છે હું અહીંયા સાચે વેડિંગ પ્લાન કરવા આવી છું
17: વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી સ્ટારિંગ પૂજા જોશી પરીક્ષિત તામલિયા ભાવિન ભાનુશાલી મિલોની જોન્સા અ ફિલ્મ બાય ધ્વનિ ગૌતમ રિલીઝિંગ ઓન 15th મે
19: આ ફેમિલી વાળી ફિલિંગ ને મેં ત્યાં બહુ મિસ કરી છે
17: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
20: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
17: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
20: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
17: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
20: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
17: કોલ 020-8900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
20: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
21: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
21: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
21: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: ये है लाइका गोल्ड। किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
1: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208514540, बुक ऑनलाइन एट इवेंट्राइट।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
0: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium, light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedia. With over 100 years of Ayurvedic legacy, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
2: London, this 20th June, Bollywood ki powerhouse voice, Bhumi Trivedi, aa rahi hai live in London. Get ready for one unforgettable night of music, dance and full-on energy. Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Book now at srevents.com. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner, Laika Radio.
4: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही
5: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद
6: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यमियस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
5: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
7: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 02087677627
8: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स
9: लाइक अ गोल्ड ऑफिशियली लंदन्स नंबर 1 एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhai Rafi sahab ki awaaz mein aapne film Kajal ka geet suna aur iski ek wajah ye bhi thi ki Fani Majumdar, jo ki pioneer Indian film director the who worked in Bengali and Hindi cinema, unki yaadgar filmon mein Street Singer, KL Sehgal साहब के नोटेड सॉन्ग्स, बाबुल मोरा नहीं छूटा जाए एंड मीना कुमारी की फिल्म आरती, ऊंचे लोग, सिंगापुर एंड काजल में भी काम, काजल भी इन्हीं की फिल्म थी और आज ही के दिन वो इस दुनिया को छोड़ कर गए थे. 28th of December 1911 में उनका जन्म हुआ था एंड 16th May 1994 में एट इन व्हेन ही वाज 82 इयर्स ऑफ एज ही पास्ड अवे. लेकिन अपने पीछे अपना काम छोड़ गए हैं जिसके ज़रिए हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे एंड इनकी और भी बहुत सी यादगार फिल्में, कन्यादान, हाउ कैन आई फॉरगेट कन्यादान भी कन्यादान में भी इनका योगदान रहा था. कन्यादान, काजल, ऊंचे लोग, बदलते रिश्ते, एक चादर मैली सी, इसके अलावा आकाशदीप, कन्यादान, यस दिस वाज मेड बाय हिम एज वेल, डायरेक्टेड बाय फानी मजूमदार एंड भैया, देन ऐसी बहुत सारी फिल्मों में इनका योगदान रहा है. मैंने कुछ और भी गीत चुने हैं जो जिनका ताल्लुक इन्हीं के साथ है, फानी मजूमदार जी के साथ, तो वो गीत भी ज़रूर सुनिएगा. लेकिन साथ साथ ज़रा ये वाली इन्फॉर्मेशन भी जल्दी से ले लें कि क्या हो रहा है किशोर कुमार नाइट में. किशोर कुमार नाइट राइट वे कहाँ हैं आप? 7th May 2018 ओके. कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी, इनके साथ संजय एप्पल एंड द 515 बैंड, विच इज़ रियली नाइस बैंड, एंड इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th June एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles. Tasty Track of the Hour sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Another beautiful song. फानी मजूमदार जी ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. फिल्म का नाम कन्यादान.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: Leica Extra podcast update.
3: चलिए आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट में क्या चल रहा है इस वक्त, लेटेस्ट क्या है। लाइका एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड जो है वो है इंडिया वीक शोकेस, होस्टेड बाय अनुज राडिया। टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनके, लाइका रेडियो नेटवर्क ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम मंडे 26th टू मे 31st। एंड जो पुराने एपिसोड्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, वेडिंग्स एंड बियॉन्ड। एंड इनके साथ साथ होम स्कूलिंग डिबेट है एंड विल्स एंड प्रोबेशन। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अगर आपको पता नहीं कि कहाँ देख सकते हैं तो इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: राइट भी, आपको दो गानों की में से एक चुनना है गीत, और वो दो गाने हैं फिल्म खेल खेल में से मैंने चुने हैं। एंड आशा भोसले एंड किशोर दा ने गाए हैं दोनों गीत, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों या फिर एक मैं और एक तू। इन दोनों में से कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है? ये गीत मैंने क्यों चुना है, क्योंकि ये फिल्म आज ही के दिन 1975 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें काम किया था ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह ने, रवि टंडन ने बनाई थी ये फिल्म, आर डी बर्मन साहब का संगीत था और गुलशन बाबरा जी ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। इन्फॉर्मेशन सारी दे दी, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं, आपके व्हाट्सएप मुझे जल्दी से मिलने चाहिए।
4: At Tesco, we know that right now every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials, so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Bush. See tesco.com/aldiprice match.
5: This is Leica Gold. Travelhubworld.com.
6: कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays
7: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call Travelhub 24/7 on 0208 782 8833
8: or visit travelhubworld.com.
9: Travel Hub, best service with unbeatable price.
10: At all protected.
9: Visit travelhubworld.com.
11: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dhol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code Leica10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.

0: इन गीतों के जरिए हमने फ़ानी मजूमदार जी को याद किया। बहुत प्यारी प्यारी फिल्में उन्होंने बनाई। तमाशा वॉज अनदर फिल्म देवानंद, मीना कुमारी, अशोक कुमार को लेकर बनाई थी। गूंज सुरैया थी उस फिल्म की, हीरोइन और हीरो थे सुरेश एंड बन। उसके अलावा श्री मिनंती, वो भी फिल्म बनाई थी, वो मलयालम फिल्म थी। एंड बहुत सी मलयालम फिल्में भी उन्होंने बनाई, पर आरती वॉज आउटस्टैंडिंग फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। मीना कुमारी एंड अशोक कुमार ने एंड प्रदीप कुमार थे इस फिल्म में। और अब ज़रा करेंसी रेट हो जाए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128.7, Pakistani rupees 371.27, Sri Lankan rupee 435.39, Bangladeshi taka 163.62, Afghanis 85.50 and US dollars 1.33.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And Gold Rate is at the market mein 109.56 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: भाई मैंने पूछा था दो गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे और एक मैं और एक तुम। ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, इसलिए मैंने इस फिल्म के दो गीत दोनों में गीतों में से एक की एक को शामिल करने की सोचा। एंड ज़्यादातर मेरे साथियों ने जिस गीत को वोट दिए हैं वो गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो जिन्होंने एक को वोट दिए थे वो निराश नहीं होंगे मुझसे, क्योंकि दोनों ही गीत बहुत खूबसूरत हैं। किसी और रोज़ मैं वो गीत भी आप तक पहुंचा दूंगी। थैंक यू एवर सो मच इतने सारे मैसेजेस भेजने के लिए।

0: to celebrate its 70th anniversary. Five countries are boycotting the contest because of Israel's participation. From Sky News, I'm Chris Milligan.
1: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in London.
2: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
3: चलिए आज के मौसम के बारे में आपको बता दें कि आज drizzle है and gentle breeze भी चल रही है. Maximum 14 and low will be 9 degrees Celsius. और कल का मौसम भी ठीक ठीक है. 16 degree रहेगा temperature और low will be 8 degree. ये है संडे के temperature. अपने दिल का temperature ठीक रखिए ना. बाहर का मौसम जैसा भी हो, temperature जैसा भी हो, हम cope कर ही लेते हैं.
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Sarita Sabharwal.
3: ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड द फाइनल आवर. इफ यू हैव जस्ट ज्वाइन मी तो आपने मिस किया दो घंटे का प्रोग्राम. तो कल से ये गलती बिल्कुल नहीं करना. कल 4 बजे अपने अपने रेडियो सेट के बिल्कुल करीब आ जाइए. आजकल रेडियो सेट कहाँ, टेलीफोन ऐप पर ही बहुत से लोग सुनते हैं. तो जिस भी जरिए को चुना है, स्वागतम, वेलकम. और मेरा साथ है आपके साथ टिल 7 o'clock. अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन होता रहेगा. आइए सुनते हैं बैक टू बैक दो जबरदस्त गाने.
1: Leica Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
4: At all protected.
1: Leica. Sarita Sabharwal.

0: महेंद्र कपूर साहब का साथ निभाया इस गीत में आशा भोसले जी ने, रवि जी का संगीत था और गुमराह फिल्म से मैंने चुना था इस गीत को। 1963 की फिल्म थी, बहुत खूबसूरत फिल्म, सारे गाने भी ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ ये गीत भी पसंद आएगा जो अब आप सुनने जा रहे हैं, फ्रॉम द फिल्म कल आज और कल।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: क्या बात है, ऐसे गीत कहाँ सुनने को मिलते हैं। लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ें। फिल्म का नाम था सेहरा, 1963 की फिल्म थी। एक अरसे के बाद इस गीत को मैंने प्रोग्राम में जगह दी। उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने इस गाने को एंजॉय किया, आपने भी ज़रूर एंजॉय किया होगा। इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा और भी बहुत से अच्छे अच्छे गीत टिल 7 o'clock।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Sophie's kids weren't channeling their inner gladiators at the Colosseum by accident. She booked a guided tour on Get Your Guide. Chance didn't have Ben baking pastel de natas with a Portuguese grandma, not his grandma, a pastry chef he found on Get Your Guide. And luck didn't make Jen swap flip-flops for flippers on a Maltese sea caves tour. That's right, Get Your Guide strikes again. The best parts of travel don't just happen, you make them happen when you book your tours, tickets and activities on the Get Your Guide app.
3: Like a goat. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट travelhubworld.com।
4: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स।
5: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
5: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
4: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 0730099823।
5: बुक योर table today.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line avi rahya che sakhna rejo husband ji Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 patidar samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana.
12: Disha Basmati Rice. Disha Rice is available in all Asian grocery stores nationwide and Sony Cash and Carry, all Sainsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira Cash and Carry, Southall, Dagenham Supermarket, all exotic stores, Reading and Slough.
11: Disha Basmati Rice.
13: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
14: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
15: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
14: Call today on 01923-883-100
15: or go to skylordcruiseandholidays.com.
14: Book with confidence.
15: We're Atoll protected.
16: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
17: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
16: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
17: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
19: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: अरे भाई, इस गीत को सुनते तो बहुत सारे मैसेजेस एकदम स्क्रीन पर आए हैं। थैंक यू एवर सो मच, इसी तरह से साथ देते रहिए, मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराई। मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड मुबारक बेगम की आवाज़ थी, एंड फिल्म का नाम था हमराही, 1963 की फिल्म। ऐसे बहुत से गीत आप सुन पाते हैं इन अवर स्पेशल शो, एंड दैट इज़ विंटेज गोल्ड, जो मेरे बाद लेकर आ रहे हैं सैंडी शाह, उनका भी साथ दीजिएगा।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Like a gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आइए आपको करेंसी का रेट एक बार फिर से बता दें। एक पाउंड के बदले आज आपको मिल सकता है इंडियन रुपीज 128.2, पाकिस्तानी रुपीज 371.27, श्रीलंकन रुपीज 435.40 एंड बांग्लादेशी टका 163.62, अफगानिस 84.40 एंड US डॉलर्स 1.33.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabawal. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate is fact market mein 109 pounds and 56 pence ka 1 gram sona.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2020.

0: अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत पसंद किया होगा इस गीत को भी। बस आज की मुलाकात यहीं तक थी, अगली मुलाकात कल होगी। जी हाँ, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका साथ निभाऊंगी। और अब आ रहे हैं सैंडी, उनका साथ दीजिएगा। मेरी तरफ से अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग।
1: ये है Like a Gold, Sarita Sabawa.
2: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milayein 0208839 0880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. रागा सन।
3: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099883।
4: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: London volume vadhari do. A 20 June Bollywood ni powerful voice Bhumi Trivedi aavi rahi che London. Ram chahe leela chahe leena chahe. Dhamakedar musical night mate ready thai jao. Udi udi ja. Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Tickets book karo srevents.com par. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner Leica Radio.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
14: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
13: ये तो बताओ, कोई पता चला?
14: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
13: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
14: शीघ्र शीघ्र. क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208514540. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
15: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
16: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
15: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
16: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
15: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
17: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। एज यू सेलिब्रेट, स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस। विजिट www.mantraholidays.co.uk और कॉल 02023 7736333 now. Apta bonded.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply.
20: Sarita Sabowal with your weekend classics. मेरे

0: So after that lovely song from Surya, we're heading towards some messages. Aur uske baad, got two lovely songs before the news. Ek hoga film Adle Jangir, Mohammed Rafi saab ki awaaz, aur ek hoga Lata Mangeshkar ka Naushad ke sangeet par, film ka naam Amar, and I'll join you straight after the news.
1: Vintage Gold, every weekend with Sandy Shah.
2: Laika Gold.
1: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Kitty party ho ya business meeting ya koi khas celebration, ab har event banega stylish. At Vivek House, Godfather and Co. Swadish khana, 5-course lunch, sirf £35. Zabardast ambience aur convenient car parking available at Holiday Inn Watford. To der kis baat ki? Booking ke liye WhatsApp karein 073-00-99-8823.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
8: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
10: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामास्टर रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
11: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
12: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
11: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए मीनारज्वेलर्स.com। कॉल 02087677627।
14: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: के लिए।
1: विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह। Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: This is Like a Gold. Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 Our line.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
0: द वॉइस दैट touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
2: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
2: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
5: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line avi rahya che sakhna rejo husband ji Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 patidar samaj Wembley Park ma ratna 8 vage tickets booking mate विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रहो हसबंड जी।
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 0208574 8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
9: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
8: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
9: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
8: दर्शन पण अने यूरोप पण।
9: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
8: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
9: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
10: लाइक अ गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Gold Nights, Leica Gold on 10:35 AM.
1: International Siddhashram Shakti Center की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टर रोड एरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: London, volume padhari do. A 20 June Bollywood ni powerful voice Bhumi Trivedi. Aavi rahi chhe London.
10: Ram chahe, Leela chahe, Leela chahe.
9: The Makedar musical night mate ready thai jao.
10: Udi, udi jao.
9: Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 PM to 11 PM. Tickets book karo srevents.com par. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner Leica Radio.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com।
14: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ Leica Gold पर।

साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए। लो साहेब हमसे रूठ गए।

0: लाइका गोल्ड
1: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हसबंड जी
0: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
2: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
2: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill. When I get back from India, roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Sari Raat, Bollywood classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

0: is like a gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
5: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
7: Bollywood ke legend kalakar, sirf Laika Gold par.